0: of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 7 जून 2026 की रविवार वाली शाम और आप सभी को वैशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज चलाएंगे मोहम्मद रफी के गीतों की रेलगाड़ी और इसी कड़ी में आप मुझे बताएंगे कि ये जो मोहम्मद रफी का गाना है ये किस एक्टर पर फिल्माया गया है.

नंबर आप जानते हैं 0439-799-767. सही जवाब भेज दीजिए जल्दी जल्दी. लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनेंगे आज के संक्षिप्त समाचार. इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में घर से व्यवसाय शुरू करने पर, और फिर समझेंगे कि कैसे चुने जाते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनी, और आप किस तरह से एक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल के लिए किसी का नाम भेज सकते हैं. इसके बाद लाएंगे फिल्मी डायरी में शाहिद कपूर के जीवन पर चर्चा, और अंत में आपकी पसंद के गीत. आज चला रहे हैं मोहम्मद रफी के गीतों की रेलगाड़ी, जिस कड़ी में मैंने आपसे पूछा है कि ये जो गीत है वो कौन से एक्टर पर फिल्माया गया है.

04397997767 हमारा नंबर है, जल्दी जल्दी भेज दीजिए संदेश। तब तक आइए सुनते हैं आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ ऑकस समझौता पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हालांकि परमाणु पनडुब्बी सौदे को लेकर एक बार फिर आलोचना तेज हो गई है। समझौते में हुए ताजा बदलाव के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से 3 सेकेंड हैंड वर्जीनिया श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी। मूल योजना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को 2 पुरानी और 1 नई सबमरीन मिलनी थी। इस बदलाव के बाद मल्टी बिलियन डॉलर के इस रक्षा समझौते पर फिर सवाल उठने लगे हैं। ग्रीन्स पार्टी के रक्षा प्रवक्ता डेविड शूब्रिज ने ABC के इनसाइडर्स कार्यक्रम में कहा कि इस समय ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे बड़ा रणनीतिक जोखिम अपनी रक्षा नीति पर वॉशिंगटन के प्रभाव के कारण संप्रभुता कमजोर होने का है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑकस के कारण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना के बीच किसी संभावित संघर्ष में खिंच सकता है और सवाल उठाया कि देश की समुद्री सुरक्षा के लिए परमाणु पनडुब्बियों की वास्तव में कितनी आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर मेलबर्न के व्यस्त फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन पर शनिवार रात किशोरों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कई युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कुछ किशोरों के पास मशेटे भी थे। घटना के दौरान स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। सूचना मिलने पर प्रोटेक्टिव सर्विसेज ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और एक ट्रेन में सवार 4 किशोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भी मशेटे बरामद किए गए। इसके अलावा स्टेशन क्षेत्र के पास 2 अन्य किशोरों को भी हिरासत में लिया गया। झड़प में घायल हुए 17 वर्षीय किशोर को हाथ में गहरा कट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दूसरी ओर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ स्पीयर फिशिंग कर रहे एक व्यक्ति की शार्क के हमले में मृत्यु हो गई। इस 35 वर्षीय व्यक्ति पर शनिवार सुबह राज्य के दक्षिण पश्चिम में एल्बनी के पास स्थित माइकलमास द्वीप के तट से दूर कथित तौर पर 4.5 मीटर लंबी शार्क ने हमला किया। पुलिस के अनुसार व्यक्ति को नाव के जरिए किनारे लाया गया जहाँ पैरामेडिक्स पहले से मौजूद थे, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये घटना पिछले महीने हुई एक अन्य घातक शार्क हमले के बाद सामने आई है। मई में पर्थ के पास रॉटनेस्ट द्वीप के निकट हॉर्स शू रीफ में गोताखोरी के दौरान 2 बच्चों के पिता पर भी शार्क ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें पानी से निकालकर नाव के जरिए जेटी तक लाया गया था, लेकिन पैरामेडिक्स उन्हें भी नहीं बचा सके थे। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज समुदाय पापुलोंग खुज्जा में डीजल की कीमत $4.28 प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। इस समुदाय में आय के सीमित स्रोतों में एक स्थानीय गैर लाभकारी कला केंद्र है, लेकिन अबोरिजिनल कला मेलों में अपनी कलाकृतियां बेचने के लिए कलाकारों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगस्त में होने वाले डार्विन अबोरिजिनल आर्ट फेयर तक पहुंचने के लिए करीब 2,500 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। ऐसे में 4-पहिया वाहन में एक बार ईंधन भरवाने का खर्च लगभग $350 तक पहुंच जाता है। ब्लैकस्टोन के नाम से भी जाने जाने वाला पापलो कुंजा एलिस स्प्रिंग्स से लगभग 900 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से पक्की सड़क तक पहुंचने में करीब 5 घंटे लगते हैं, फिर एलिस स्प्रिंग्स तक 5 घंटे और वहां से डार्विन तक लगभग 15 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलेडो शहर में एक सामुदायिक उत्सव के पास हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है। इस घटना में कम से कम 12 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टोलेडो पुलिस के उप प्रमुख जो हेफनन का कहना है कि शुरुआती जांच से लगता है कि कम से कम 2 लोगों ने गोलीबारी की। उनका ये भी कहना है कि संभवतः ये दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे, लेकिन गोलीबारी की चपेट में आकर 12 लोग घायल हो गए। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और जांच जारी है। अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच फिलहाल तेजी से आगे बढ़ रही है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में रसोई गैस फिर महंगी हुई है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें 29 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज कर चुकी हैं। नई दरें आज 7 जून से लागू होंगी। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। ये पिछले 3 महीनों में दूसरी बार की बढ़ोतरी है। इससे पहले मार्च में सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति
आपूर्ति में बाधाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में तेजी आई, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। तेल कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत और नुकसान को कम करने के लिए कीमतों में ये बढ़ोतरी आवश्यक थी, हालांकि इससे आम परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने की आशंका है। इसी के साथ 7 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। संक्षिप्त समाचार के बाद अब चर्चा करेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में घर से व्यवसाय शुरू करने के क्या है नियम और आप किस तरीके से आसानी से घर से एक काम शुरू कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन का यह अंश रहेगा। इसी के साथ आज मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल भी था और वो ये था कि मोहम्मद रफी का ये जो गीत है वो किस एक्टर पर फिल्माया हुआ है। आइए गीत सुनते हैं।

आप मुझे अपने जवाब भेज सकते हैं 04397997667 पर. और जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, आइए समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गृह उद्योग कैसे शुरू किया जा सकता है. घर से चलाया जाने वाला व्यवसाय कई लोगों के लिए एक आकर्षक विचार हो सकता है. ये लागत कम करता है, अपने समय पर अपने अनुसार काम करने की आजादी देता है और कई तरह के पेशों के लिए उपयुक्त तो होता है, सिर्फ दफ्तर से जुड़े कामों के लिए नहीं. इसके कुछ उदाहरणों में फिटनेस और वेलनेस, सौंदर्य सेवाएं, खान पान या पेशेवर चाइल्ड केयर शामिल हैं. लेकिन हर व्यवसाय की तरह इसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस एपिसोड में हम गृह उद्योग शुरू करते समय ध्यान रखने योग्य बुनियादी नियमों और अहम कदमों को सरलता से समझा रहे हैं. चाहे व्यवसाय घर से चलाया जाए या कहीं

0: ओर से। आमतौर पर इसे एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे लाभ कमाने के इरादे से किया जाता है। हालांकि हर पैसे कमाने का तरीका व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता। ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की असिस्टेंट कमिश्नर एंजेला एलन इस अंतर को समझाती हैं।
1: For example, when you have a one-off transaction or an activity that is a hobby where you aren't seeking to make a profit, a home-based business is usually one where you have an area of your home set aside that is used exclusively as a place of business.
0: चाहे आप व्यवसाय किसी दुकान से चलाएं, अपने घर से या किसी और स्थान से, टैक्स दायित्वों, सुपर एनुएशन और रजिस्ट्रेशन के मामलों में तैयारी समान रूप से जरूरी होती है। असिस्टेंट कमिश्नर एलन बताती हैं।
1: So to start a business, even if it's from home, you'll need a tax file number, TFN, and you might also need an Australian business number. Both are free and you can apply online. Depending on how much money you make, the size of your small business, and if you have employees, you may also need to register for other ATO obligations, such as goods and services tax, GST, pay-as-you-go withholding, and fringe benefits tax.
0: सबसे पहले आपको अपने व्यवसाय की इकाई का प्रकार चुनना होता है। जिस व्यावसायिक ढांचे के रूप में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वे इस बात को प्रभावित करता है कि आप पर टैक्स कैसे लगेगा, आपको किस स्तर का कानूनी जोखिम होगा और क्या उस राज्य में अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी जहां आप काम कर रहे हैं। स्प्रिंट लॉ छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए एक ऑनलाइन कानूनी सेवा प्रदाता है। इसके सह संस्थापक एलेक्स सोलो कहते हैं कि घर से व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए सबसे आम ढांचा कंपनी नहीं वरन एकमात्र स्वामित्व यानी प्रोप्राइटरीशिप है, जिसे सोल ट्रेडर भी कहा जाता है।
2: The majority of people running sort of one person work from home businesses are set up as a sole trader, which is the cheapest, quickest option for a one person business in Australia. You can do it yourself online.
0: लेकिन दोनों विकल्पों sole trader और company के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं।
2: A company costs more. It can cost, you know, at least $600 a year to set up. There's ongoing fees, additional tax obligations. So it's more expensive. But again, it can suit a one-person business or a few-person business really well because it provides a lot of risk protection. If things go wrong in the business, it really is separated from your personal life, your home assets. It's all limited to the company, if that makes sense. So it can be a better idea, but still, given the cost, the most common we see is that sole trader model for people setting up the sort of work-from-home business.
0: आपके उद्योग के आधार पर आपको घर से व्यवसाय चलाने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है, खास तौर पर अपने स्थानीय काउंसिल से। जब ग्राहक आपके घर पर आते हैं, जैसे कि इन होम मसाज थेरेपी, हेयर और नेल सलून या फिर फिटनेस और योगा स्टूडियो, तो काउंसिल की मंजूरी आमतौर पर जरूरी होती है। आप अगर किसी विशेष उत्पाद के साथ कहीं काम नहीं कर रहे हैं या थोक स्तर पर व्यवसाय नहीं कर रहे हों, तो ज्यादातर खाद्य संबंधित व्यवसायों को राज्य की फूड अथॉरिटी के बजाय अपने स्थानीय काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्योंकि अक्सर स्थानीय योजना नियम लागू होते हैं। एंड्रू डेविस न्यू साउथ वेल्स फूड अथॉरिटी के कार्यवाहक CEO हैं। वे कहते हैं कि काउंसिल की मंजूरी मिलने पर अधिकांश खाद्य व्यवसाय घर से संचालित किए जा सकते हैं।
3: And that could include mobile food premises, so food trucks, for example. It could be caterers, people who make food, and then they take it to functions and events. You can even get manufacturers that operate from home as well, and also retail where food is made and sold directly to the end consumer.
0: चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हों और चाहे आपका व्यवसाय घर से हो या नहीं, एक खाद्य व्यवसाय मालिक के रूप में आपको फूड स्टैंडर्ड्स कोड का पालन करना अनिवार्य होगा। डेविस कुछ उदाहरण देते हैं कि ये कोड खाद्य विक्रेताओं के लिए किन बातों को कवर करता है।
3: The food safety practices that need to be met and also any general requirements in relation to premises. So we're talking about the kitchen in the home, for example, that would be the premises. But also the equipment, if products are being made and labeling is required, those labeling requirements are also in there.
0: प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक फैमिली डे केयर सेवा मॉडल के तहत घर से काम कर सकते हैं, जिसे आंशिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त पोषित भी किया जाता है। आमतौर पर एक फैमिली डे केयर शिक्षक सोल ट्रेडर के रूप में पंजीकृत होता है और किसी मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध के तहत काम करता है। ये सेवाएं राष्ट्रीय कानून के तहत संचालित होती हैं और इन्हें फेडरल सरकार के नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के आधार पर आंका जाता है।

0: प्रमुख संस्था फैमिली डे केयर ऑस्ट्रेलिया के मुख्य सचिव एंड्रू पैटरसन इस क्षेत्र से जुड़ी बड़ी आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हैं.
1: You need to have a Certificate 3 qualification in early childhood education and care. There are a range of background checks, like working with children checks, police checks and the like, some first aid and safety qualification requirements. The premises needs to be assessed as suitable. Once you get sort of through all those preliminary requirements, it's then the point at which you would register with a family daycare approved service.
0: मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता शिक्षक को सहायता और निगरानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है और ये सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य होता है कि संबंधित कानूनों और विनियमों, जिसमें स्थानीय सरकारी मंजूरी भी शामिल है जो स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती है, का पालन किया जा रहा है. पैटरसन आगे बताते हैं कि किसी भी गृह उद्योग को शुरू करने के लिए जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे टैक्स पंजीकरण, उपयुक्त बीमा लेना, वे सब यहाँ भी लागू होती हैं.
1: The misconception perhaps sometimes about family daycare is that it's a babysitting or a child minding service. It's important to come into family daycare sector with an understanding of the fact that you are an early childhood education and care professional, but you're also running a business and you're working in an environment that is highly

0: Advertising.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Advisor Chris O'Hire नए व्यवसाय मालिकों के लिए एक अहम सुझाव देते हैं.
3: I would always encourage people who are starting a business to build some financial management and some basic legal framework understanding skills. Because in the end, even if you go to a lawyer or an accountant and they recommend something to you, as a business owner, it is ultimately your decision. It's not theirs. They give you their advice.
2: Chris O'Hire बताते हैं कि अगर आप किराए के घर में रहते हुए गृह उद्योग शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मकान मालिक से अनुमति लेना आवश्यक है.
3: For anyone who's renting their house, not just local council, but you need to be speaking to your landlord or your property manager early in the piece, because they may choose not to allow you to do that. And it would be, I would imagine, quite a horrifying experience to start a business up and have lots of excitement and then have your residential lease cancelled because you've broken your lease.
2: Australia Explained के इस अंश को आपके लिए प्रस्तुत किया SBS News से Zoe Thomadou और SBS Hindi से Vrishali Jain ने. और इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का. अंतराल के उस पार चर्चा करेंगे कि भाई OAM यानी मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए किस तरीके से नामांकन किए जाते हैं, क्या है ये प्रक्रिया, और चर्चा करेंगे कि आज OAM के ऊपर बातचीत क्यों कर रहे हैं. तो बहुत सारी चर्चाएं होने वाली हैं. बने रहिए SBS हिंदी पर वैशाली के साथ. आज चलाएंगे मोहम्मद रफी के गीतों की रेलगाड़ी. तो अगर कोई गीत उनका सुनना चाहते हैं तो मुझे बता भी सकते हैं इसी नंबर पर. आपके संदेशों के इंतजार में हूँ. बस एक छोटा सा अंतराल, फिर हाजिर होती हूँ. कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा. कहाँ, अभी तो बताया SBS हिंदी पर.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वैशाली जैन को. और आज मेरी और आपके बीच की चर्चा में जो सवाल था वो ये था कि भाई ये जो गीत है वो मोहम्मद रफी साहब का है, ये तो खैर कोई पहचानने की बात ही नहीं है, लेकिन ये फिल्माया किस पे गया है? और आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया इतने आसान सवाल मत पूछा करो वैशाली. लेकिन कभी कभी आसान सवाल पूछने चाहिए भाई, संडे है, अच्छे अच्छे सवाल पूछने चाहिए. तो ये आप मुझे बताइए कि इस पर एक्टर कौन है, ये कौन से एक्टर पर फिल्माया गया गीत है.

रवनीत जी मेलबर्न से सही जवाब भेज चुकी हैं, सुरेंद्र चावला जी क्रैनबर्न से, चेतन शाह जी ने तो बोल दिया व्हाट एन इजी पहेली। तो जी आसान सवाल, संडे है ना, आसान सवाल पूछते हम लोग। और शिखा नीश त्विशा शाह, उन्होंने भी सही जवाब भेजा है, कुमार जी ने भी सही जवाब भेजा है, राजेंद्र वोरा जी ने भी सही जवाब भेजा है। बंधु आपने नाम नहीं लिखा है लेकिन आपने भी सही जवाब भेजा है, और राजेंद्र वोरा जी ने मुझे ऐसा भी कहा है कि मैं उनको ये पूरा गाना सुनाऊं आज के शो में, जो मैं पक्की बात सुनाऊंगी। और कुमार जी का ऐसा कहना है कि उन्हें 14वीं का चांद भी बहुत पसंद है, मैं वो भी आपके लिए लेकर के आऊंगी। और क्लाइड से ब्रजेश परिवार के साथ

0: advertising.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्या आ रहा है? आ रहा है किंग्स बर्थडे. किंग्स बर्थडे पर क्या होता है? मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सम्मान होते हैं, चार प्रकार के जो सम्मान होते हैं, उनकी घोषणा की जाती है. ऑस्ट्रेलिया के ये नागरिक सम्मान क्यों जरूरी हैं और कैसे आप अपने आसपास के किसी विलक्षण इंसान को या किसी अत्यधिक समर्पित इंसान को ये सम्मान दिलवाने में मदद कर सकते हैं, उसका जरिया बन सकते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे. प्रासंगिक है क्योंकि किंग्स बर्थडे है. हम आपको आने वाले हफ्ते में बहुत सारे ऐसे ही OAM रिसिपियंट से मिलवाएंगे जो समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं. लेकिन ये उससे पहले वाली बात है कि जानना जरूरी है कि OAM की जो पूरी प्रक्रिया है, किसी को ये नागरिक सम्मान मिलने की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है. तो आइए मैं और आप मिलकर के इसको सुनते हैं और आप मुझे जरूर बताइएगा आज के क्विज का जवाब. 0439799767 हमारा नंबर है. क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने समुदाय में असाधारण योगदान दिया हो? ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी पृष्ठभूमि से या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत. आप उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नामांकित करके उनकी उपलब्धि

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: जो एक स्वतंत्र निकाय है और गवर्नर जनरल को अपनी सिफारिशें भेजती है। रॉब आइलिंग गवर्नर जनरल के कार्यालय में निदेशक हैं। वे कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए है और यही कारण है कि ये प्रक्रिया वास्तव में समुदाय के भीतर से किए गए नामांकन से शुरू होती है।
2: Some recipients are very well known, but the vast majority are unsung heroes. The sort of people that we all know in the community who give tirelessly of themselves, work selflessly, and really make a difference. Some are volunteers, some achieve things in the community sector, in industry, in sports, in the arts. There's really no limit to who can be recognised, but everyone that is recognised has one thing in common, and that's that somebody else has taken the time to nominate them for recognition.
1: जब आप किसी को पुरस्कार के लिए नामांकित करते हैं, तो Council of the Order of Australia इस प्रक्रिया का प्रबंधन करती है और ये तय करती है कि किसे मान्यता दी जानी चाहिए और किस स्तर पर। Order of Australia के चार स्तर होते हैं: Companion of the Order यानी AC, Officer of the Order यानी AO, Member of the Order यानी AM और Medal of the Order यानी OAM। इनमें से सबसे प्रचलित पुरस्कार OAM है। किसी को नामांकित करने के लिए समय निकालने वाले व्यक्तियों में से एक है माइकल स्मिथ।
3: The particular individual who I was part of nominating, to me, had just been doing an

0: ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो समान सम्मान के योग्य हैं। ऑस्गुन यही बात कहती हैं।
1: I have nominated many people from the Turkish community and also from the other communities living in Australia for the different kind of awards. I have also provided references for the Order of Australia medal as well.
0: यदि आप किसी को नामांकित करने में रुचि रखते हैं तो दिशा निर्देश देखने के लिए गवर्नर जनरल की वेबसाइट gg.gov.au पर जाएं। आइलिंग कहते हैं कि नामांकन फॉर्म का पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, कार्यालय आपकी मदद करने के लिए तत्पर है।
2: Don't let fear of the form or uncertainty prevent you from nominating somebody for recognition in the Order of Australia. We all want the Order of Australia to reflect the true diversity and strength of our country, and the only way for that to happen is for all of us, all Australians, to take an active part in it, to look around their community, identify people that they think are extraordinary, have a great impact, whatever their work is, whatever their background is, and consider nominating them for the Order of Australia.
0: ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के संच को SBS न्यूज से मेलिसा कॉम्पिटोनी और SBS हिंदी से वृषारी जैन ने

0: Advertising.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Emailed to you, Zafar Saab. I will get a better clarity on this and will let you know. पर ये आपको ईमेल से प्राप्त होंगे तो जल्द ही प्राप्त हो जाने चाहिए क्योंकि मूवी रिलीज के बाद आप उसमें आपको स्पेसिफिक डेट्स लिखी रहेंगी आपके पासेस में जिसमें आप कब जाकर उन्हें देख सकते हैं. तो ये सारे कंडीशंस मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचवा दूंगी जी. तो फिलहाल आपके लिए एक ये गीत और इसके बाद आगे बढ़ाएंगे शो को. इसके बाद लूंगी एक ब्रेक दरअसल और ब्रेक के बाद जाएंगे फिल्मी डायरी पर.

0: भी सुनना अच्छा लगता है अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर हमारा पेज लाइक करें SBS हिंदी फेसबुक पर भी है
1: और अब आइए कार्यक्रम में SBS हिंदी पर विशाली के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्मी डायरी की जहां आज चर्चा करेंगे अभिनेता शाहिद कपूर की।
2: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। बॉलीवुड के जिस अभिनेता की आज हम बात करने जा रहे हैं वो भले ही स्टार किड रहे हैं लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। शुरुआत में वो फिल्म में बैकग्राउंड डांसर थे। फिल्म रंग दे बसंती में वो आमिर खान की पहली पसंद थे लेकिन डेट्स न होने पर छोड़ दी थी। फिल्मों में डेब्यू के 16 साल बाद उनके हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार का टैग दिलवा दिया। एक फिल्म के लिए उन्होंने F-16 फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। ये कारनामा करने वाले वो बॉलीवुड के पहले और अब तक के इकलौते एक्टर हैं।
3: अड़ी के

0: 25 फरवरी 1981 को जन्मे शाहिद का जन्म दिल्ली में हुआ। वो इतने खूबसूरत पैदा हुए थे कि उनका नाम ही शाहिद यानी सुंदर रख दिया गया। उनका जन्म बॉलीवुड अभिनेता पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के घर में हुआ था। जब शाहिद 3 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद शाहिद अपनी माँ के साथ दिल्ली रहते थे। शाहिद कपूर की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ज्ञान भारती स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन शाहिद ने मुंबई के मीठी बाई कॉलेज से की।
1: मुझे तुम बता दो, कोई तो वजह दो।
0: शाहिद ने 10 साल की उम्र से ही डांस सीखना शुरू कर दिया था। वो स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने शामक डावर के संस्थान में प्रवेश लिया। यहाँ शाहिद ने न सिर्फ डांस सीखा बल्कि अपने अभिनय करियर की ओर कदम भी बढ़ाए। फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में उनका सफर यहीं से शुरू हुआ। वो दिल तो पागल है और ताल जैसी फिल्मों में सितारों के पीछे डांस करते नजर आए।

शाहिद कपूर कई ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आए और कई म्यूजिक वीडियो में भी अभिनय किया। वो कुमार सानू की म्यूजिक वीडियो आंखों में भी दिखे, जो उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ। यहां से निर्माता रमेश तौरानी ने शाहिद को अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया। शाहिद कपूर ने फिल्म इश्क विश्क से साल 2003 में डेब्यू किया। ये फिल्म एक स्लीपर हिट साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।

0: दिला।
1: इसके बाद उन्होंने दिल बोले हड़प्पा, चांस पे डांस, पाठशाला, बदमाश कंपनी, मिलेंगे मिलेंगे, मौसम और तेरी मेरी कहानी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। वर्ष 2013 में शाहिद की फटा पोस्टर निकला हीरो और आर राजकुमार फिल्में प्रदर्शित हुईं। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। इसके बाद 2006 में सूरज बड़जात्या की फिल्म विवाह आई, जो बड़ी हिट साबित हुई।
2: तो मुझ पे भौंकने का नहीं, करूं तो रोकने का नहीं, खाली पिली खाली पिली रोकने का नहीं।
1: वहीं 2007 में फिल्म जब वी मेट को शाहिद की अब तक की यादगार फिल्मों में शुमार किया जा सकता है। शाहिद की वर्ष 2014 में फिल्म हैदर रिलीज हुई।

इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए शाहिद कपूर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 2009 में फिल्म कमीने में अभिनय के लिए शाहिद को खूब वाहवाही मिली। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू की।

0: साल 2003 से लेकर 2018 के बीच विवाह, जब वी मेट और हैदर जैसी कुछ सफल फिल्में शाहिद की झोली में गिरी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी इमेज को बदल नहीं पा रहे थे। तभी डेब्यू के 16 साल बाद उनके हाथ वो फिल्म लगी जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार का टैग दिलवा दिया और उस फिल्म का नाम था कबीर सिंह। रिलीज के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ये शाहिद के करियर की इकलौती सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म है। ये शाहिद के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि शाहिद को रातों रात सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म कबीर सिंह के लिए वो संदीप रेड्डी की पहली पसंद नहीं थे। फिल्म कबीर सिंह में वो पहले रणवीर सिंह को कास्ट करना चाहते थे। रणवीर सिंह ने इस ऑफर को खुद के लिए सुटेबल ना बताते हुए रिजेक्ट कर दिया था। इस तरह रणवीर सिंह के एक ना से शाहिद कपूर की किस्मत चमक गई, क्योंकि रणवीर के इनकार करने के बाद ये फिल्म उनकी झोली में आ गई थी।
1: क्यों दूर मैं रहूं तेरा गुरूर हुआ, तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला।
0: इस फिल्म के बाद शाहिद कपूर के हाथ एक और अच्छी फिल्म लगी थी जिसका नाम था जर्सी। फिल्म जर्सी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे ही ये फिल्म ओटीटी पर आई तो फिर से शाहिद सोशल मीडिया पर छा गए थे और उसके बाद ओटीटी पर आई उनकी फिल्म ब्लडी डैडी और वेब सीरीज फर्जी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और काफी दिनों तक ये ओटीटी पर टॉप ट्रेंड करती रही थी। नेहा धूपिया के पॉडकास्ट में शाहिद ने खुलासा किया कि साल 2006 में आई आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती में उन्हें काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन डेट्स की वजह से उन्हें इस फिल्म के ऑफर को ठुकराना पड़ा था। बता दें, रंग दे बसंती साल 2006 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।
1: आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है।
0: शाहिद कपूर उन चंद बॉलीवुड सितारों में शुमार होते हैं जिनके एक्ट्रेसेस के साथ लव अफेयर हमेशा फेल रहे। शाहिद ने अपने पहले म्यूजिक वीडियो आंखों में तेरा ही चेहरा की हीरोइन रिश्ता भट्ट को डेट किया। करीना कपूर के साथ तो उनका बड़ा तगड़ा अफेयर रह चुका है। विद्या बालन के भी साथ रिलेशन में रहे। प्रियंका चोपड़ा भी शाहिद की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, लेकिन शाहिद की तरफ से फुल कमिटमेंट होने के बावजूद इनमें से किसी के साथ भी उनका रिलेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। फाइनली शाहिद ने नॉन फिल्मी गर्ल मीरा राजपूत से शादी कर ली और अब शाहिद दो बच्चों के पिता भी हैं, यानी शाहिद की मैरिड लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है।
1: मैंने सुन लिया सनम, तुझको दिल का साथी, चुन लिया मैंने सनम।
0: साल 2011 में आई फिल्म मौसम में शाहिद कपूर एक एयरफोर्स पायलट बने थे। शाहिद ने इस फिल्म के लिए बकायदा F-16 वाइपर फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। शाहिद ने इंडियन एयरफोर्स का मिराज जेट भी उड़ाया था। शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 फिल्म कॉकटेल की स्पिरिचुअल सीक्वल है। ये फिल्म 19 जून 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: कोई दिल

0: बाबा मैं तो मर गया।
1: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम फिल्मी डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।
2: और इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम के आखिरी ब्रेक का, लेकिन जाने से पहले बता दूं कि भाई अभी न जाओ छोड़ कर जो गीत है वो फिल्माया गया है देवानंद और साधना पर। और इसी जवाब के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलाएंगे नॉन स्टॉप गीतों की रेलगाड़ी। बने रहिए SBS हिंदी पर वृषाली के साथ।
3: ¿Por qué elegir entre velocidad?

और इसी के साथ वैशाली आज के लिए आपसे ले रही है विदा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना बेहद ध्यान रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: मैकेंजी ने नाइन टुडे शो को बताया कि ये बजट मकबूलियत हासिल नहीं कर रहा। उधर अमरीकी ताजा तरीन टैरिफ मंसूबा ऑस्ट्रेलियन सियासी माहौल से वसी मजम्मत का सामना कर रहा है। अमरीका ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि उनके तयशुदा 12.5% टैरिफ ममालिक की जानिब से जबरी मजदूरी से लड़ने की कोशिशों की नाकामी के जवाब में है। जबकि वफाकी ट्रेजरर जिम चालमर्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जदीद गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया के मजबूत तरीन कवानीन मौजूद हैं और हिजब इख्तिलाफ के तजारत के तर्जुमान मैट किनवान का कहना है कि इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक सिर्फ 2 सतरें मौजूद हैं। हिजब इख्तिलाफ के लीडर एंगस टेलर कहते हैं वो भी इस मसले पर हुकूमत की हिमायत करते हैं।
1: Like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
0: उधर ऑस्ट्रेलिया के महकमे शुमारियात का कहना है कि मुल्क की आबादी में इजाफा 3/4 हद तक हिजरत की वजह से हो रहा है। अगर मौजूदा तखमीने बरकरार रहे तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी साल 2031 तक 30 मिलियन तक पहुंचने की तवक्का है। इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की आबादी बाजाब्ता तौर पर 28 मिलियन तक पहुंच गई है। EBS के हेड ऑफ डेमोग्राफी हेड को कहते हैं कि आबादी सालाना तकरीबन 1.6% की शरह से बढ़ रही है। उधर साबिक कैनबरा लिबरल्स की रहनुमा लेन कैसले ने पार्टी से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली है। येराबी की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कहना है कि पार्टी में जहरीला कल्चर है और वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती। मोहतरमा कैसले का कहना है कि वो आजाद हैसियत से असेंबली में बैठेंगी, जिसके बाद कहती हैं कि वो 18 माह की बदमाशी, धमकियों, झूठ और दबाव का शिकार रहीं। लिबरल लीडर मार्क पार्टिन ने इस बात की तरदीद की है कि पार्टी में जहरीला कल्चर है। उधर ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया है कि वो अपनी 1.8 अरब डॉलर की एंटी वेपनाइजेशन फंड खत्म कर रहे हैं। ये मंसूबा उन लोगों को मुआवजा देने के लिए तैयार किया गया था जिनके बारे में इंतजामिया कहती थी कि उन्हें साबिक डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडेन के तहत हुकूमत के हथियार साजी के इल्जाम से नुकसान पहुंचाया गया है। इस तजवीज को कानूनी चैलेंजेस और कांग्रेस के चंद रिपब्लिकन अराकीन के साथ डेमोक्रेट्स की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इधर ऑस्ट्रेलिया में कोलिशन का कहना है कि उसे अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के एक सर्वे में दिखाया गया है कि वन नेशन का प्राइमरी वोट इसे मुल्क की सबसे मकबूल जमात बना रहा है। सर्वे के मुताबिक इत्तेहाद के प्राइमरी वोट 20%, लेबर के 28% और वन नेशन की हिमायत 31% है, जो 4 पॉइंट्स का इजाफा है। लेबर MP जोलियान हिल कहते हैं कि हालिया सर्वे इस बात की अलामत है कि लोग महंगाई के दबाव से मायूस हो रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद के रुकन पार्लियामेंट डेन तिहान कहते हैं ये सर्वे हुकूमत से अमूमी अदम इत्मीनान की अकासी कर रहा है। उधर पाकिस्तान की वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात की है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने इस मुलाकात की तफसीलात जारी नहीं की, तहम BBC फारसी के मुताबिक ये मुलाकात किर्गिस्तान के दारुलहकूमत बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। उधर जुमेरात को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने में अमरीका की 250वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि वह एतमाद के इजहार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। सामईन आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर जुम्मा 5 जून 2026 का हफ्ता रफ्ता और मैं हूँ परदा वकार। जी सामईन, तो हफ्ता रफ्ता हमने समाप्त किया और यहाँ ये याद दहानी करवाते चलें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक सुपहर 3 बजे साउथ एशियन पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। उसके अलावा आप SBS उर्दू को तलाश कर सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है SBS उर्दू, जबकि यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको SBS उर्दू। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में सुनिए। उसके अलावा SBS के यूट्यूब पेज पर कुछ दवील दौरानिए की लेकिन दिलचस्प वीडियोस मौजूद हैं जो यकीनन आपकी तबाह के लिए बेहतरीन होंगी। उनही वीडियोस के छोटे वर्जन या स्मॉल रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे SBS उर्दू के आपको मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के

0: हुए सवाल पूछेगा।
1: दिस इंक्लूड्स चेकिंग योर पेट्स आईज, इज, टीथ, चेकिंग देयर कोट, लिसनिंग टू देयर हार्ट एंड लंग्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, हैविंग अ फील ऑफ देयर एब्डोमेन टू सी इफ वी कैन फील एनीथिंग इनसाइड, चेकिंग देयर जॉइंट्स एज वेल। द लास्ट बिट इज ऑफन टेकिंग द टेंपरेचर।
0: आपकी मुलाकात आपको आपके पालतू जानवर की सेहत के बारे में किसी भी खदशे के हवाले से सवाल करने का मौका भी फराहम करती है। डॉक्टर आपसे इलाज के इख्तियारात पर गुफ्तगु कर सकता है।
1: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
0: मशावरत के बाद जानवरों का डॉक्टर आपको जरूरी अद्वियात फराहम करेंगे, जिन्हें आप इस्तकबालिया से ले सकते हैं, जहां आप बिल की अदायगी भी कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर ओंग बताते हैं, खुसूसी आलात के साथ वेटरनरी इमरजेंसी मराकज भी बहुत से इलाकों में दस्तियाब हैं, अगर आपका पालतू जानवर अचानक बीमार हो जाए या जख्मी हो जाए।
2: Or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
0: अगर आपको अपने पालतू जानवर के बारे में फौरी तश्वीश है तो डॉक्टर ओंग मशवरा देते हैं, आप वेटरनरी इमरजेंसी सेंटर को मशवरा करने के लिए कॉल करें।
2: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
0: जब आप वेटरनरी इमरजेंसी सेंटर पहुंचेंगे तो अमला आपके पालतू जानवर की जांच करेगा, ताकि ये मालूम हो सके कि हालत कितनी संगीन है।
2: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
0: जानवरों के डॉक्टर किसी भी तजवीज करदा तशखीसी टेस्ट और इलाज और मुतवक्का इखराजात की वजाहत करेंगे। पालतू जानवर के मालिक के तौर पर आप अपने पालतू जानवर से मुंसलिक किसी भी इखराजात के जिम्मेदार हैं, बशमूल आपके दौरे के वक्त वेटरनरी फीस की अदायगी, जैसा कि डॉक्टर बारकर वजाहत करती हैं।
1: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
0: अगर आपके पास अपने पालतू जानवर की देखभाल पर खर्च करने के हवाले से माली वसाइल महदूद हैं, तो ये बात वेटरनरी अमले के सामने एहतराम के साथ शेयर करना जरूरी है। वेटरनरी टीमें पालतू जानवर की बहुत परवाह करती हैं। मेहरबानी और बाइज्जत बातचीत उन्हें आपके पालतू जानवर की देखभाल पर तवज्जो मरकूज करने और आपके साथ ताउन करने और फिर आपके पालतू जानवर के लिए बेहतरीन फैसला करने की इजाज़त देती है। पालतू जानवरों की इंश्योरेंस भी एक ऑप्शन है, जो वेटरनरी खिदमात के अखराज को पूरा करने में मदद देती है, डॉक्टर ओंग कहते हैं।
2: So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment, and then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer, and you get reimbursed for the amount that you spend. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
0: पालतू जानवर खानदान के कीमती रुकन होते हैं, जो खुशी और हमराही फराहम करते हैं, और अपने मकामी वेटरनरी डॉक्टर की मदद से आप सब मिलकर उन्हें खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी फराहम कर सकते हैं। सामईन, आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर वेटरनरी क्लिनिक के हवाले से खुश आमदेद ऑस्ट्रेलिया की इस हफ्ते की किस्त, और मैं हूँ वर्दा वकार।
3: आप SBS ऑडियो का पॉडकास्ट सुन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की दीगर इकसात सुनने के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए।
0: जी सामईन, तो अब वक्त हो रहा है नशरियात में एक और गीत शामिल करने का। हम शामिल कर रहे हैं और का एक नया गीत, तेरे बिना।

0: तो क्या किरदार अदा कर रही हैं?
1: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंटरव्यू के लिए आपने बोला उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त राह गुजर के सेट पर हैं और मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है नीलवा, और इस कैरेक्टर में डिफरेंट शेड्स। ये ड्रामा जब हमने स्टार्ट किया था तो अच्छी खासी सर्दियाँ थी, लेकिन अब जो है वो गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि ऐसा होता है सीरियल थोड़ा लंबा है ये वाला। बहुत मजा आ रहा है इस कैरेक्टर में। सबसे पहले नेगेटिव है, उसके बाद शादी हो जाती है इसकी, वो फिर आप देखेंगे ड्रामे में, क्योंकि अगर मैं यहाँ स्टोरी बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा आप लोगों को।
0: बतूल, आप अभी नई आई हैं इंडस्ट्री, तो बताएं जरा लोगों को कि किन किन प्रोजेक्ट्स में आप क्या करती हैं।
1: अच्छा, मेरा जो पहला स्टार्ट जो मेरा था वो मेरा पीटीवी से था, एंड काफी सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि पीटीवी जो है वो इतना कोई अच्छा चैनल नहीं है, और इसके ऊपर काम करना अब इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि पहले था। पहले के जमाने में तो आर्टिस्ट सारे हमारे जितने भी हैं बड़े बड़े, वो सब पीटीवी से काम करके स्टार्ट हुए हैं, और वही स्टार्स हैं अभी तक। तो मैंने डबल माइंडेड हो गई थी मैं, कि मैं करूं या नहीं करूं। वो भी एक बहुत हॉट टॉपिक पे था, जो कि लियारी से किमाड़ी था। एक हिस्ट्री थी, बड़ी अच्छी हिस्ट्री और स्टोरी करके उन्होंने बनाया था, तो दैट वाज माय स्टार्ट। और उसके बाद फिर मैंने काफी वेट किया कि मैंने इंतजार किया, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था उसमें मैंने बिल्कुल अपने आप को ब्लैक बेस लगाया, गेटअप किया, तो सबको ऐसा लगने लगा शायद मैं दिखती ऐसी हूँ। सबको ऐसा लगा, इनफैक्ट मेरे काफी दूर के रिलेटिव्स ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि बतूल भड़ो के इतनी काली कैसे हो गई। फिर मैंने हम टीवी से फिर सेकंड प्रोजेक्ट किया, वो एक चुभन सी उसका नाम था। अच्छा। तो उसमें कास्ट बहुत अच्छी थी, सोनिया जी थी, हिरा थी, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बड़ा अच्छा रहा वो। फिर मैंने रमजान प्ले किया, माई डियर सिंड्रेला नाम है उसका, और अब जो है वो मैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया, बीच में एक प्रोजेक्ट होता है ना, आप किसी चैनल से करते हैं भाई पैसे चाहिए समटाइम, मतलब एक्टर को कभी कभी पैसों के लिए भी काम करना पड़ता है, तो मैंने वो प्रोजेक्ट किया। इंशाल्लाह वो ऑन एयर होगा कभी, तो आप लोग वो देखेंगे। उसके मीनवाइल मैंने जो है वो ये प्रोजेक्ट साइन कर लिया, तो मैं ये कर रही हूँ, और इसके साथ मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है।
0: एक है वो सरप्राइज है।
1: हाँ, हम उसके उसकी शूट हमने स्टार्ट कर दी है, वो भी ग्रीन से ही है। पहले जब मैंने मीडिया ज्वाइन नहीं किया था, तो उससे पहले मैं एक जॉब करती थी, सो वहाँ पे काफी लोग आते थे, गेस्ट काफी आते थे, इंटरेक्शन काफी लोगों से होता था। तो वहाँ पे एक मुझे बड़ा शौक होता था, सारे आर्टिस्ट जब आतिफ असलम और ये लोग सब लोग आते थे ना, तो उनको देख कर मुझे शौक होता था कि यार मैं भी ना इस तरह से ना आऊँ तो लोग मेरे साथ पिक्चर्स लें, और ना चले पिक्चर्स ना भी लें लेकिन मैं काम करूँ, मैं टीवी पे आऊँ। तो अब जाहिर सी बात है, अब कैसे आया जाए टीवी पे, क्योंकि मेरे फैमिली में से कोई भी टीवी में नहीं है। तो वहां पे एक मर्तबा एक शेफ आई, वो मसाला टीवी या हम टीवी में करती हैं शो, आई गेस रिदा नाम है उनका। तो वो आई और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना हेल्प चाहिए, और मुझे ना कोई कैब बुक करवा दो। तो मैंने उनको कैब बुक करवा के दी, तो उन्होंने मुझे यूं गौर से देखा, कहा कि तुम मीडिया में काम क्यों नहीं करती। मैंने बोला मेरे तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ ऑडिशंस दो, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जर्नी को स्टार्ट करो, क्योंकि तुम यहाँ पे खड़ो के सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम ठीक है, तुम क्वालिफाइड हो, चीजें कर रही हो, लेकिन जरूरी ये है कि अगर तुम्हारा ख्वाब है और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल मुझे नजर आया है कि तुम कर सकती हो और कॉन्फिडेंस है, तो तुम करो। वहां से मेरा फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। समटाइम जब आप बचपन से कुछ सोचते हैं ना,
0: तो वो हो जाता,
1: तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको पूरा करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो स्टोरीज हैं, जो जिस तरह की स्टोरीज हैं जो हम लोग वाकई में देखना चाहते हैं, और 90% या 95% पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसके घर से रिलेट करती है सारी स्टोरीज, सास भी होती है उसमें। इसके साथ साथ जो यंग जनरेशन है, जो भी जितने भी लोग हैं, उनके साथ भी अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उन टॉपिक्स को भी उठाना चाहिए, उन टॉपिक्स पे भी बात करना चाहिए। अभी रिसेंट मैंने एक ड्रामा जो है वो था, तो आजकल के काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, और कंटेंट कंजम्पशन पे ड्रामा बनना चाहिए, कि हम लोग जिस तरीके से यंग जनरेशन का बड़ा बोलते हैं कि ये है वो है, लेकिन हम लोगों के अंदर एक ये आदत आ गई है कि हम एक रील देखते हैं फिर चेंज करते हैं, दूसरी रील देखते हैं फिर चेंज करते हैं। चेंजिंग हो रही है यहाँ पे रील्स की, उससे आपके इमोशंस भी चेंज हो रहे हैं ना, एक सैड है एक हैप्पी है, एक सैड है एक हैप्पी है, तो उस सब चीजों से ना इंसान के दिमाग को पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, और वो एकदम स्ट्रेस में जा रहा है। तो इन चीजों पे भी बनाना चाहिए ड्रामा, कि कंटेंट कंजम्पशन कम हो, और या फिर कोई ऐसी लड़की दिखाएं जो कि बहुत कंटेंट देखती है, और फिर उसके जो है ना एकदम से उसके दिमाग पे ऐसे असर हो गए, और ये और वो, मतलब, और उसको अच्छे तरीके से लिखवा के वो ये टॉपिक दिखाया जा सकता है, जिसकी बहुत जरूरत है मुझे।

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
1: बनाओ और ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाओ.
2: आपका है फिल्मों का शौक?
1: हाँ है तो शौक, शौक तो मेरा बहुत है. लेकिन अब देखें समटाइम्स जो है वो आपको आपको जो है वो बहुत ज्यादा यू नो कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है, दिखने की जरूरत होती है, या आपका कोई पैनल होना चाहिए जिसके थ्रू आप जा सकें. तो ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती है. मुझे लगता नहीं था कि गैदरिंग्स और जो है ना वो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी मुझे लगता था नहीं है, और टैलेंट बहुत आगे जा सकता है. लेकिन समहाउ कॉन्टेक्ट जो होंगे ना आपके, तो वो आपको जो है वो रखेंगे मीडिया में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में और अच्छे अच्छे उसमें आगे. ये एक बहुत बिटर ट्रुथ है जिसको हम शायद नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज का.
2: तो अगर रोल मिला फिल्म में आ गई आप, किस तरह का रोल सोचा हुआ है, कैसा करेंगी?
1: मैंने तो 2-3 सोचे हैं.
2: अच्छा.
1: जब आप सोचने पे तो पाबंदी नहीं
2: है,
1: सोचने पे तो आप कुछ भी सोच सकते हैं. उसमें मेरा हीरोइन का भी है, पल्लू उड़ाती हुई, आंचल उड़ाती हुई, तैयार होती हुई. उसमें मेरा एक ऐसी लड़की भी है जो कि जिसको शौक है जिमिंग का. उसमें एक ऐसी लड़की भी है जो कि बेताशा मॉडर्न और मगरूर है.
2: अच्छा.
1: जिसको अपने आगे कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसको आगे जाके फिर पता लगता है कि मगरूर होना अच्छी बात नहीं. ये सारे मतलब मैं सोचती हूँ इन सब चीजों के बारे में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए.
3: सितारों की दुनिया में आपने बदूल आबदी की बातें सुनी, जिसकी वीडियो आप SBS उर्दू के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं. SBS उर्दू के लिए ये रिपोर्ट कौकब जहां ने तैयार की.
4: SBS उर्दू SBS साउथ एशियन पर.
5: जी सामईन, तो बतूल आबदी की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं. और अब हम पहुंच गए हैं नशरियात के इख्तिताम पर. SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक सुपहर 3 बजे SBS साउथ एशियन पर नशर होती है. बुध का प्रोग्राम बुध को ही SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है. तो अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं. ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए. इसके अलावा SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है. SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के औकात में देखिए. प्रोग्रामों के मुंतखब हिस्से आप सुन सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर और वेबसाइट पर भी. उसके अलावा आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको नशरियात में क्या कुछ पसंद आया. आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा टैलेंट या आपकी कोई ऐसी मुनफरिद कहानी है जो SBS उर्दू को अपनी नशरियात में शामिल करनी चाहिए, या उस मौजू का अहाता जो आपको पसंद हो SBS उर्दू को करना चाहिए. नशरियात में कैसी मौसीकी शामिल करें, आपको पॉप पसंद है या सूफियाना कलाम, हमदिया कलाम पसंद करते हैं या गीत, ये सब आप हमें बता सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर. और इसके साथ हो रहा है नशरियात का इख्तिताम. जाते जाते ये दरख्वास्त के दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ अपनी मेज़बान वर्दा वक़ार को दीजिए इजाज़त फ़ी अमान अल्लाह. लेकिन नशरियात का कुछ वक्त अभी बाकी है, तो जाते जाते आप सुनिए आबदा परवीन का नारे मस्ताना.